0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर

0: और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आज हम सैर पर निकले हैं वृंदावन की, और वृंदावन में देखने के लिए बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे कि कुछ मंदिर हैं यहां पर, गंगा यमुना के घाट हैं यहां पर, और बहुत से ऐसे खूबसूरत वन हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां के बिरला मंदिर की, तो बिरला मंदिर जिसे यहां श्री रंगनाथ जी मंदिर भी कहते हैं, यूपी के वृंदावन में मौजूद एक फेमस हिंदू मंदिर है ये, और ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ भगवान रंगनाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण फेमस बिरला परिवार ने करवाया था, जो कि समाज सेवी कार्यों और धार्मिक योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का ये भी बहुत मशहूर है, इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। कई पूजनीय मंदिरों में इसे शामिल किया जाता है, और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बांके बिहारी के नाम से पूजा जाता है। मंदिर वृंदावन के बीच स्थित है, और देश विदेश से लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, और वृंदावन में अगर आप जाएं तो ये मंदिर जरूर दर्शनीय है। इसके बिना तो वृंदावन की जो यात्रा है वो अधूरी ही मानी जाती है। इस्कॉन मंदिर भी है यहां पर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी इसे आप कह सकते हैं, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर की, जिसमें कृष्ण और बलराम की पूजा की जाती है। वृंदावन का एक फेमस आध्यात्मिक केंद्र है ये, और ये मंदिर इस्कॉन द्वारा बनाया गया है। 1975 में इसे बनाया गया था। भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर ये मौजूद है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की मूर्तियां स्थापित हैं, और जब आप यहां जाएंगे तो सचमुच ये मंदिर आपको भक्ति में सराबोर कर देगा। वर्तमान वृंदावन में प्राचीनतम मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर राजा मानसिंह द्वारा बनवाया हुआ है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। ये मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बना था। मूलतः ये मंदिर 7 मंजिलों का बना हुआ है। ऊपर के 2 खंड औरंगजेब ने तुड़वा दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर जलने वाले दीप मथुरा से दिखाई पड़ते थे। यहाँ का विशालतम मंदिर रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है। ये दक्षिणात्य शैली में बना हुआ है, और इसके गोपुर बड़े विशाल हैं, भव्य हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत के श्रीरंग मंदिर की तरह ही लगता है। वृंदावन के बाकी दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निधि वन, कालियादेह, सेवा कुंज, ऐसी बहुत सी प्लेसेस हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो भी काफी प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है, इसे आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं वृंदावन की प्राकृतिक सौंदर्य की, तो ये भी देखने लायक है। यमुना नदी इसके तीनों ओर से घेरे हुए है इस जगह को। यहाँ के सघन कुंजों की भांति भांति के फूलों से शोभित लता और ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन को सचमुच उल्लास से भर देते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादो की हरियाली आंखों को जो शीतलता देती है, वो राधा कृष्ण के प्रतिबिंबों के दर्शनों का ही एक प्रतिफल जैसे लगती है, और वृंदावन के कण कण को रसमय बना देती हैं। भक्ति और प्रेम का साम्राज्य यहाँ पर रहता है। जब भी आप जाएंगे आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यहाँ पर, इस धरती पर आपको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। हमेशा यहाँ पर हर कण कण में कृष्ण का वास महसूस होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के घाटों की, तो यहाँ बहुत से घाट हैं जहाँ पर आपको जरूर एक बार जाना चाहिए। वराह घाट, कालिया दमन घाट, सूर्य घाट, युगल घाट, बिहार घाट, श्री आंधेर घाट, इमली घाट, ऐसे श्रृंगार घाट, अनेकों घाट हैं जहां पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। आपको इस यात्रा का अगर पूरा आनंद लेना है तो पहुंचना कैसे है वृंदावन, ये भी आपको बता दूं कि वृंदावन पहुंचना काफी आसान है। अगर आप दिल्ली से ड्राइव कर रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। बसें भी ISBT से चलती रहती हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो मथुरा जंक्शन भी कनेक्टेड है, फिर यहां से आप वृंदावन के लिए रिक्शा ले सकते हैं। खाना क्या है आपको वृंदावन में, ये भी बताऊंगी, कहाँ ठहर सकते हैं ये भी, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

दोस्तों मथुरा वृंदावन का खाना लोगों को खूब पसंद आता है। यहाँ की कचौड़ी, बेडमी पूरी, समोसे, लस्सी और पेड़े खूब फेमस हैं। लेकिन एक सब्जी भी यहाँ काफी शौक से खाई जाती है, जिसे गड की सब्जी कहा जाता है। शादी, भंडारे या दूसरे फंक्शंस में पूरी के साथ गड की सब्जी जो होती है वो खाना लोगों को खूब पसंद आता है। और इस सब्जी का स्वाद इतना गजब का होता है कि पनीर भी इसके आगे आपको फीका लगेगा। इसे आप मिक्स वेज भी कह सकते हैं, जिसे लुटपुट

स्टाइल में बनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं इस जगह पर ठहरने की, तो भाई स्वाद चखने के बाद या इससे पहले आपको कहीं ठहरने का बंदोबस्त तो ज़रूर करना होगा। वृंदावन में ठहरने के लिए बजट, आश्रम, लग्जरी तीनों तरह के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, धर्मशालाएं भी हैं। आप जहां चाहें वहां रुक सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। आप अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार इन जगहों का चुनाव कर सकते हैं। वृंदावन में आप ख़ास तौर से ख़रीदने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लड्डू गोपाल और देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। पीतल, संगमरमर या लकड़ी की सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। और पोशाक और श्रृंगार का सामान आपको यहाँ पर मिल जाता है। तुलसी माला, जप माला, गोटा पट्टी की बनाई हुई, जरी की बनाई हुई लड्डू गोपाल के लिए पोशाकें, हाथ से कढ़ाई किए हुए सुंदर वस्त्र, ऊनी वस्त्र, बहुत कुछ आपको मिलेगा। पीतल के दिए, अगरबत्ती स्टैंड, घंटी और ऐसी कई दैनिक पूजा की सामग्रियां आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ के पेड़े तो आप बिल्कुल लाना मत भूलेगा। खाने की चीजों में प्रसिद्ध और स्वादिष्ट ब्रज के पेड़े, जिन्हें आप उपहार के तौर पर या प्रसाद के तौर पर भी अपने घर ला सकते हैं, तो ये भी आपको जरूर लाना चाहिए। कुछ बाजारों की बात करूं तो जैसे लोई बाजार है, यहाँ पर पोशाक, मूर्तियां, पारंपरिक वस्त्र यहाँ मिलते हैं। इस्कॉन मंदिर के पास भी बाजार है, वहां से भी आप धार्मिक पुस्तकें, सीडीज जो चलाने के लिए गाने अगर आप चाहें वो खरीद सकते हैं, आध्यात्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर के सामने की गलियों में भी श्रृंगार का सामान, आसन और छोटी सजावटी आइटम आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। और वृंदावन की संस्कृति पूरी तरह से भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति, प्रेम और उनकी लीलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर आपको इस जगह को एक बार अगर आप गए तो कभी भूलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ की भाषा की बात करूँ तो ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है और अपनी मिठास और प्रेम भाव के लिए जानी जाती है। यहाँ के मूल निवासियों को ब्रजवासी कहा जाता है, जिनका जीवन जो है वो अत्यंत सरल, पारंपरिक और भगवान के स्मरण में लीन रहता है। यहाँ सात्विक भोजन खास तौर पर खाया जाता है, पसंद किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, तुलसी, पारंपरिक मिठाइयाँ, ये सभी चीज़ें यहाँ पसंद की जाती हैं। श्री कृष्ण और गोपियों प्रेम का प्रतीक रासलीला वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाट्य कला है, जिसे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। भगवान के प्रेम में गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीत रसिया भी यहाँ पर घर घर में गूंजते हैं। होली के अवसर पर सिर पर जलते दीपों को रखकर किया जाने वाला चरकुला नृत्य और फूलों की साझी कला यहाँ की अनूठी पहचान है। होली, लठमार होली, फूलों की होली विश्व भर में यहाँ पर प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा, इन पर्वों पर मंदिरों और गलियों में भव्य उत्सव होता है। वृंदावन रक्षाबंधन के लिए भी खास तौर पर जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो बहुत कुछ है जो वृंदावन में है देखने के लिए। एक बार जब भी आपको अपने जीवन में मौका मिले इसे जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये सचमुच आपको एकदम भक्ति में तल्लीन कर देगा, भक्ति में डुबो देगा। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्तों इसी गीत के साथ आज के सफर से लेती हूँ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस विदा, लेकिन फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज

0: 당근.
1: घर आंगन कार्यक्रम के आज की इस खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, जब रिश्ते विश्वास की डोर से बंधते हैं तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। और रिश्तों की सबसे मजबूत डोर वो होती है जिसे प्यार, विश्वास और सम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज संस्कृत दिवस भी है और खास प्रस्तुति एक कदम बुजुर्गों की ओर भी, तो इन सब के बारे में हम और भी बातें करेंगे। लेकिन पहले आज का सवाल, आपके लिए रक्षाबंधन की कौन सी बात सबसे खास है? कोई ऐसी याद, कोई परंपरा या कोई भावना जो इस त्योहार को आपके लिए स्पेशल बनाती हो? अपने विचार हमें भेजिए इस मेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्यार की ये डोर, बुजुर्गों का साथ, अपनी संस्कृति का एहसास, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म थी काजल। और रिश्ते बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, एक छोटी सी डोर से बांधा जाता है। रक्षाबंधन भी ऐसा ही खूबसूरत पर्व है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अपनापन का उत्सव है। राखी की उस नन्ही सी डोर में आखिर इतना अपनापन आता कहाँ से है? शायद बचपन की उन अनगिनत यादों से, जब भाई बहन कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं तो कभी सबसे बड़े दुश्मन, कभी खिलौने के लिए लड़ाई, कभी चॉकलेट के लिए झगड़ा और अगले ही पर साथ बैठकर हंसी मजाक। लेकिन बड़े होने के साथ रिश्तों की भाषा बदल जाती है। बहन का फोन आता है, खाना खाया और भाई पूछता है घर पहुंच गई, और बिना कहे भी दोनों समझ जाते हैं कि सामने वाला ठीक है या नहीं। यही तो रक्षाबंधन का असली अर्थ है। रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहने का वादा है। आज की राखी सिर्फ ये कहने का दिन नहीं है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, बल्कि ये कहने का दिन भी है कि हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तो इस रक्षाबंधन राखी बांधते समय केवल मिठाई और उपहार न दें, एक वादा भी दें, मुश्किल समय में साथ रहने का, दूर रहकर भी हाल पूछने का, और उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए बचपन वाली शरारतों को दिल में जिंदा रखने का। क्योंकि राखी की डोर कलाई पर कुछ पल के लिए बंधती है, लेकिन उसका प्रेम दिल में जीवन भर रहता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्तों की खूबसूरती साथ रहने में नहीं, दूर रहकर भी दिल के पास रहने में है। राखी की डोर बस एक धागा नहीं, भाई बहन के अटूट विश्वास का वादा है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म छोटी बहन से। और रक्षाबंधन यानी वो दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख सुरक्षा और लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन हर साल कुछ कलाइयां ऐसी भी होती हैं जो राखी के धागे का इंतजार तो करती हैं मगर ड्यूटी की जिम्मेदारियां उन्हें घर तक नहीं आने देती। कोई भाई सीमा पार देश की रक्षा कर रहा है, कोई पुलिस की वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा में खड़ा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी अनजान की जान बचाने में जुटा है, कोई रेल की पटरियों पर यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित कर रहा है, कोई मेट्रो विमान या आपदा राहत सेवा में अपने कर्तव्य निभा रहा है। इनकी बहनों के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि गर्व और इंतजार का संगम होता है। राखी कभी डाक से पहुंचती है, कभी तस्वीरों में बंधती है तो कभी सिर्फ दुआओं में, लेकिन प्यार वो हर दूरी से बड़ा होता है। और कहते हैं भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, कोई पुलिसकर्मी रात भर जागता है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में सेवा देता है या कोई रेल या विमान सेवा का कर्मचारी अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, तब वो सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बल्कि पूरे देश की बहनों की सुरक्षा और मुस्कान की रक्षा कर रहे होते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर उन सभी भाई बहनों को हमारा स्नेह, सम्मान और शुभकामनाएं। जिनके बीच दूरियां तो हैं लेकिन दिलों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। यदि आपके भाई सेना बल में या फिर पुलिस, चिकित्सीय सेवा, रेलवे, मेट्रो, विमानन या किसी ऐसी सेवा में है जहां ड्यूटी की वजह से वो इस रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए अपना संदेश हमें भेजिए। और यदि आप स्वयं ऐसी सेवा में हैं तो अपनी प्यारी बहन के नाम अपना संदेश लेकर हमें भेजिए। ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा, fmgoldga@gmail.com। और या फिर आप रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ भी अच्छा सा लिखना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेजिए। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर आपके इन अनमोल संदेशों को अपने हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि रिश्तों की असली डोर दूरी नहीं दिल से बंधी होती है।

बसी हैं, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और सबसे रोचक बात कि संस्कृत का प्रभाव केवल धर्म और दर्शन तक सीमित नहीं है, संस्कृत की संरचना इतनी व्यवस्थित है कि आधुनिक समय में भी इसके व्याकरण और भाषिक संरचना पर शोध किया जाता है। तो संस्कृत दिवस इसलिए केवल संस्कृत बोलने या पढ़ने का दिन नहीं है, ये अपनी जड़ों को पहचानने का अवसर है, युवाओं को संस्कृत सीखने और बोलने के प्रति रुचि बढ़ाना भी है। तो आज के समय में जब हम नई भाषाएं सीख रहे हैं, नई तकनीक अपना रहे हैं और दुनिया से जुड़ रहे हैं, तब अपनी प्राचीन भाषाई विरासत को जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक होना अपनी जड़ों को भूलना नहीं बल्कि अपनी जड़ों से शक्ति लेकर आगे बढ़ना है। और चलिए कुछ ईमेल्स भी आ गए हैं तो क्यों ना उसको पढ़ लिया जाए। सबसे पहला ईमेल है नवीन भाटिया जी का, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मेरी जो बड़ी बहन है गीता, वो 1991 में अमरावती ट्रेनिंग के लिए गई थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली इसलिए वो वहां जाकर राखी बंधवा लिया। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अटूट प्यार का प्रतीक होना ही असली रक्षाबंधन है। और ऐना लिखती हैं, नमस्ते, मेरे लिए राखी की सबसे खास बात सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं है बल्कि उस रिश्ते को महसूस करना है जिसमें बचपन की नोकझोंक, ढेर सारी यादें और बिना कहे एक दूसरे का साथ देने का भरोसा होता है। समय के साथ जिंदगी बदल जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता वही मासूमियत बनाए रखता है। और ऐना के बाद चरणदास जी ने भी कुछ लिखा है कि नमस्कार जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, मेरे भैया मेरे अनमोल रतन को मैं फरमाइश करने वाला था, आपने शुरू में चला दिया, तो थैंक यू सो मच। और रक्षाबंधन का इंतजार रहता है, बहुत अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं, जाति मजहब से बढ़कर रक्षाबंधन का त्यौहार है। और डॉक्टर राजेश्वर राव जी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है कि इसके पीछे क्यों ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंदिरा और साची की कहानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वो जो लड़ाई थी, युद्ध थी, वो हार रहे थे, तो साची ने एक सीक्रेट धागा इंद्र के कलाई पर बांधा और जो ईश्वर हैं उनकी जीत हो गई। बहुत ही अच्छे अच्छे मेल्स आए हैं और आप आगे भी अभी लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

अब ये हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म बेईमान से। और दोस्तों 28 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। यह दिन हमें उस भाषा से जोड़ता है जिसे भारत की ज्ञान परंपरा की आधारशिला माना जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसके शब्दों में केवल अर्थ नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की संस्कृतियां भी।

अभी हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को फिल्म रेशम की डोरी। और एक और मेल है हमारे सामने। राधा पाठक जी लिखती हैं कि हमारे यहाँ सुबह सुबह दरवाजे पर सोनी सोना बनकर उन्हें खीर से पूजा जाता है, फिर जो खीर बनती है उसी से टीका होता है भाई का और राखी बांधी जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर द मेल। और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं अनुभव की कोई कीमत नहीं होती, और इस अनमोल अनुभव का सबसे बड़ा खजाना होते हैं हमारे बुजुर्ग। उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं जी बल्कि हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव से ऐसी सीखें जुटाई जो आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। ऐसी ही एक सीख है पैसों की समझ और संतोष का महत्व। आज की दुनिया में कमाने की रफ्तार तो बढ़ गई है, लेकिन बचाने की आदत कहीं पीछे छूटती जा रही है। नई चीजें खरीदना आसान हो गया है, मगर जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझना मुश्किल। ऐसे में अगर किसी से सीखनी हो आर्थिक समझ, तो एक बार अपने घर के बुजुर्गों की ओर जरूर देखिए। उन्होंने हमें सिखाया कि कमाई चाहे कम हो, लेकिन हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। पहले बचत, फिर जरूरत और उसके बाद ही शौक। यही छोटी सी आदत उन्हें हर मुश्किल समय में मजबूत बनाती थी। बुजुर्गों की एक और खूबी थी, वो चीजों की नहीं उनकी उपयोगिता की कद्र करते थे। कपड़े पुराने हो जाएं तो उन्हें संभाल कर पहनते थे, चीजें खराब हो तो मरम्मत करवा लेते थे, रिपेयर करवा लेते थे। उनके लिए सादगी मजबूरी नहीं, समझदारी थी। और फिर आती है सबसे बड़ी दौलत, संतोष। तो याद रखिए, पैसा जीवन को सुविधाएं देता है, लेकिन संतोष जीवन को सुकून देता है, और सुकून किसी भी बैंक में नहीं मिलता। और आज जब घर के किसी बुजुर्ग के साथ आप बैठें, उनसे पैसों की नहीं, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव की पूंजी जरूर मांगिए। यकीन मानिए, वो विरासत किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। उम्र ने जो खामोशी से सिखाया, वो कोई किताब पढ़ा न सकी। दौलत से नहीं, संतोष से जो जीना सीखा, वही सीख जिंदगी कभी भुला न सकी।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म बातों बातों में। और एक और मेल है मेरे सामने, श्रीपाल गोयल जी लिखते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। भाई बहन के प्रेम विश्वास और अटूट स्नेह का ये पवित्र त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए, आपको भी। और राखी पर उन रिश्तों को भी सलाम जिन्होंने भाई का फर्ज निभाया। दोस्तों, रक्षाबंधन का नाम आते ही आंखों के सामने एक भाई एक बहन राखी का खूबसूरत रिश्ता उभर आता है। लेकिन आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उन रिश्तों की जिसमें खून का रिश्ता तो नहीं था, फिर भी निभाया गया भाई का फर्ज पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जन्म से भाई नहीं होते, लेकिन मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं। कभी बड़ी बहन अपने छोटे भाई की तरह पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेती है, कभी चचेरे ममेरे या फुफेरे भाई सगे से भी बढ़कर साथ निभा जाते हैं, और कभी पड़ोस का कोई बेटा बचपन का दोस्त, सहकर्मी या गुरु बिना किसी स्वार्थ के हमारी सुरक्षा, सम्मान और खुशियों की चिंता करता है। रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते दोस्तों, विश्वास से बनते हैं। राखी केवल कलाई पर बंधा धागा नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का नाम है जो कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस रक्षाबंधन पर आइए उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करें जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर भाई बनकर हमारा हाथ थामा, क्योंकि दुनिया में सबसे अनमोल वही रिश्ता है जो बिना किसी अपेक्षा के साथ बस निभाता।

और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म थी अनपढ़। और दोस्तों आज के खास सेगमेंट एक कदम बुजुर्गों की ओर को भी हमें नहीं भूलना है, तो बुजुर्गों की प्रेम कहानियां साथ निभाने के असली मायने। दोस्तों कहते हैं प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं होता, प्यार वो होता है जब बिना कहे सामने वाले की दवा का समय याद रहे, जब चश्मा ढूंढने से पहले हाथ उसी तरफ बढ़ जाए और जब 70 की उम्र में भी कोई पूछे चाय में चीनी कम रखूं ना। जरा सोचिए आजकल रिश्ते कुछ मिनटों में नाराजगी भी नहीं झेल पाते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तो पूरी जिंदगी साथ निभाया है। सुख दुख तंगी अमीरी बीमारी से

हर मौसम में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कई दादाजी आज भी बाजार जाते समय दादी जी के लिए उनकी पसंद की इमली या चूड़ियां ले आते हैं। कई दादी जी आज भी सबसे पहले अपने जीवन साथी की थाली सजाती हैं। ये छोटे छोटे काम शायद दुनिया को नजर ना आए, लेकिन यही तो प्रेम की सबसे बड़ी भाषा है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार बड़े बड़े उपहारों से जताया जाता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि प्यार रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बसता है। दवा समय पर दे देना, थक जाने पर बिना कहे पानी का ग्लास पकड़ाना, और हर मुश्किल में सिर्फ इतना कहना कि मैं हूं ना। आज जब दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, शायद हमें थोड़ा रुककर अपने घर के उन दो चेहरों को देखना चाहिए जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। बस उसमें शोर नहीं, सुकून है। तो आज घर जाइए, अपने दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा से पूछिए कि आपकी पहली मुलाकात कैसी थी। यकीन मानिए, आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की पूरी किताब सुनने को मिलेगी। क्योंकि सच्चा साथ वही है जहां उम्र चेहरे पर बढ़ती है, लेकिन अपनापन दिल में हमेशा जवां रहता है। सफेद बालों में भी मोहब्बत का रंग गहरा है, हर झुर्री में उम्र नहीं साथ का पहरा होता है, जो हाथ आखिरी सांस तक थामे रहे, असल में वही प्रेम जीवन का सबसे सुनहरा चेहरा होता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई। और दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आज बेटियां या बहनें सिर्फ रक्षा की अपेक्षा नहीं करती बल्कि अपने भाइयों की सबसे मजबूत रक्षा कवच भी बन रही हैं। वो मुश्किल समय में उनका हौसला बनती हैं, सही सलाह देती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाती हैं और कई बार माता पिता की तरह उनका ध्यान भी रखती हैं। सोचिए कितने घरों में बहनें अपने भाई की पढ़ाई में मदद भी करती हैं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय और मेहनत लगाती हैं। जब भाई किसी परेशानी में होता है तो सबसे पहले उसकी बहन ही कहती है, चिंता मत करो मैं हूं ना। और आज की बेटियां आत्मनिर्भर हैं, शिक्षित हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो ये साबित कर रही हैं कि सुरक्षा केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि विश्वास, समझ, साहस और साथ निभाने से भी मिलती है। रक्षाबंधन का असली संदेश भी यही है कि ये केवल भाई का बहन के प्रति कर्तव्य नहीं बल्कि दोनों का एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और साथ निभाने का वादा है। रिश्ते बराबरी से और प्रेम से और भी सुंदर बनते हैं, तो जरा आज अपने जीवन की उस बहन को धन्यवाद कहना मत भूलिए जिसने कभी आपकी हिम्मत बढ़ाई, आपका मनोबल संभाला या बिना कहे आपका साथ दिया।

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। और इसी के साथ आज की खास प्रस्तुति को देते हैं यहीं विराम। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और 1545 लोग लापता हैं। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाकरा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व

परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 77,093 पर और निफ्टी 15 अंक बढ़कर 24,106 पर पहुंच गया। भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वाश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में आज रात वेलवेन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11 और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, भारतीय फिल्म सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर, जिनकी फिल्में जब भी देखो उतने ही चाव और आनंद के साथ देखी जाती हैं जितने कि उनके रिलीज के वक्त देखी गई होंगी। शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो उनके फिल्म मेकिंग के अंदाज स्टाइल से वाकिफ ना हो। अपनी फिल्म में उन्होंने छोटे छोटे विषयों को बड़ी संजीदगी के साथ पेश किया। यही नहीं, फिल्मों का एंटरटेनमेंट पक्ष भी पूरी तरह से बरकरार रखा जाता रहा। यही वजह है सत्यकाम, आनंद, आशीर्वाद, चुपके चुपके जैसी मूवीज आज की पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती है। गौर करें तो ज्यादातर फिल्म्स उनकी पारिवारिक सामाजिक रहीं। उनके कलाकार भी उतनी ही शिद्दत से पात्रों में डूब जाया करते थे जितनी लगन और मेहनत से वो फिल्म मेकिंग किया करते थे। तो आज के इस सफर पर निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सिने करियर की बातें, उनकी फिल्मों के गीत सुनते रहे आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी का जिक्र हो रहा है इस वक्त, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। फिल्मों से जुड़े लोग उन्हें ऋषि दा के नाम से ज्यादा पुकारा करते रहे। जन्म इनका हुआ 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में। फिल्मों में आने से पहले ऋषि दा गणित और साइंस के शिक्षक रह चुके हैं। शतरंज खेलने का भी इन्हें काफी शौक रहा है। फिल्मों में आने का चस्का इन्हें हुआ कहां से, कोलकाता के न्यू थिएटर से। और फिल्मों में उनके करियर को सही दिशा देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का काफी सहयोग और साथ रहा।
1: मैंने

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और बात हो रही है इस वक्त जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्मी करियर की। इनके फिल्मी करियर की बात करने पर ये बात सामने आती है कि भाई इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 1951 की फिल्म 2 बीघा जमीन से। इस फिल्म में वो एक सहायक के तौर पर जुड़े हुए थे। जाने माने दिग्गज फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की। लगभग 6 साल तक वो एक सहायक के तौर पर काम करते रहे और निखरते रहे। स्वतंत्र रूप से 1957 की फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एज अ डायरेक्टर फिल्म का निर्देशन किया। मुसाफिर फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई, पर शोमैन राज कपूर उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 की फिल्म थी, इसके निर्देशन की जो बागडोर थी वो ऋषि दा को सौंप दी।

अनाड़ी फिल्म भी आपने जरूर देखी होगी। फिल्म दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती है और गीत संगीत के तो कहने ही क्या। फिल्म का गीत संगीत लाजवाब रहा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म का एक गीत क्यों ना सुन लिया जाए। अनाड़ी फिल्म से ये गीत है। किसकी आवाज में है? लता जी की आवाज में है और साथ में है मुकेश साहब।

ऋषिकेश मुखर्जी ने इसके बाद कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद जैसी फिल्म्स का उन्होंने निर्देशन किया। लगभग चार दशक के अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी और हमेशा स्टोरी चाहे गंभीर हो या हल्के फुल्की, कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषिदा का फिल्म डायरेक्शन का एक अलहदा ही तरीका रहा। अपने दौर के अन्य जाने माने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ उनका कोई कमर्शियल कंपटीशन नहीं रहा। उनका अपना एक अलग स्टाइल रहा और एक अलग धारा।

जाने माने फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी। फिल्म्स के अलावा उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों के लिए भी काम किया। तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छाओ, रिश्ते, उजाले, इन धारावाहिकों के लिए भी उनका काम सराहनीय रहा। इसके अलावा उनके गीत फिल्मांकन का तरीका भी बेजोड़ रहा। एक बार उन्होंने कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूं। मैं अपनी फिल्म्स में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूं और कोशिश करता हूं कि एक बैलेंस बना रहे।

ऐसे बेजोड़ उत्कृष्ट फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को अनेक सम्मानों से सम्मानित भी किया जाता रहा। उनकी फिल्म्स और उनके काम को लेकर 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में उनकी फिल्म आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी फिल्म 1956 की नौकरी और 1959 की मधुमती और 1972 की आनंद को बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1999 में भारतीय फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी ऋषिदा को नवाजा गया और 2001 में ऋषिदा को पद्म विभूषण से नवाजा गया।

निर्देशक बिमल रॉय से जुड़ने से पहले 40 के दशक में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने सिने करियर की शुरुआत की न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन। यही उनकी मुलाकात जाने माने संपादक सुबोध मित्र से हुई और उनके साथ रहकर ऋषिदा ने फिल्म संपादन का काम सीखा। ऋषिदा ने बाद में बिमल रॉय से जुड़कर उनकी फिल्म दो बीघा जमीन और देवदास का संपादन भी किया। अपने करियर की शुरुआत में ही दिग्गज कलाकारों को अपने निर्देशन में काम कराने का उन्हें बहुत ही सुनहरी मौका मिला। मुसाफिर फिल्म जिसका उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन किया था, दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन जैसे कलाकार रहे इस फिल्म में। इसके बाद अनाड़ी में भी उन्होंने राज कपूर जैसे शोमैन महान अभिनेता को अपने निर्देशन में काम करवाया। अनाड़ी फिल्म सुपरहिट मूवी रही और इस फिल्म ने उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया।

बड़े बड़े कलाकारों ने ऋषि दाह के निर्देशन में काम किया। उनके निर्देशन में कलाकारों का उत्कृष्ट अभिनय सामने आया। बेजोड़ अभिनेत्री जया भादुड़ी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स का काफी योगदान रहा। जया भादुड़ी को पहला ब्रेक भी उन्हीं की फिल्म 1971 की गुड्डी से मिला। अपने किरदार को जया जी ने भी इतने चुलबुले अंदाज में निभाया, इतनी अच्छे तरीके से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज तक नहीं भूल पाए। बाद में जया जी ने उनके निर्देशन में बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, मिली जैसी कई सुपरहिट फिल्म्स में काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी उन गिने चुने चंद फिल्मकारों में शामिल रहे जो कि कहते हैं कि संख्या से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया करते थे, यकीन किया करते थे। फिल्म निर्माण के अलावा उन्होंने कई फिल्म्स का संपादन भी किया। कई फिल्म्स की कहानी स्क्रीन

मीडियम है 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 28 तारीख और दिन है शुक्रवार। श्रोतों, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोतों तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यंगफो, श्री हेमंता सुरगिरी और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लवसंग तप्तन तथा अन्य

सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी वांगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीठी न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक।

0: आकाशवाणी समाचार पटना।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
4: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षा बंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्योहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से

0: अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 में है और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए पहले सुनते हैं गांधी स्मृति, तत्पश्चात आप सुन सकेंगे नरेंद्र चंचल के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापू जी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ, तो वो तो हमारी शरण के लिए है। रोहतक में तो अंग्रेजों से नाम कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह के पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन कहते हैं। फिर वो मीठा है शायद, तो वहाँ तो जाति लोग पड़े हैं, शायद अहम लोग भी पड़े हैं।

उसी जगह पे है तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है कि वो हरी चंद वो तो हमारे कुरान है तो उनके पास से तो जो कुछ काम देना है हम लेंगे और पीछे वहां पर जब वो हक की बात आ जाए हक से नहीं क्योंकि वो तो हरिजन है ना तो वो तो जन्म से ही हमारी कुरानी करने के लिए पैदा हुए हैं उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए न दे तो प्यासे रहे खाना चाहिए हम दे तो खाए और वो तो भूखा रहे और दौड़ा या दे तो हम दे तो ठीक है और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं तो इसको तो मैं तकबर ही मानता तो अंग्रेजी स्वतः चलती थी तब भी ऐसा करता था लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है उसका कोई चारा है हम कुछ कर सकते हैं कि हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें क्या करें अभी वो छोड़ भी नहीं सकते ये एक समझने लायक बात है क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ रहते हैं कि नहीं और ऐसा काम करते हैं कि नहीं क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल तब पीछे ऐसी बात पे रहना चाहते उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है लेकिन हरिचंद को तो गुलामी ही करना है ऐसा हो जाता है तो मेरे पास आ गए वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पढ़े लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं उद्योग भी सीखते हैं तो वो तो उनकी बात हुई लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें तो मैंने आपको ख्रिस्टियों का तो कहा अब भी हरिजनों पर अभी तो ऐसा हो गया ना अच्छा अंग्रेजी सत्र चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे हमको दंड कर सकते थे अभी हमको आज कौन दंड करेंगे हम सबको दंड ले सकते हैं और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को ही दया देंगे जज हमको क्या करने वाला था ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है उनको जमा होते हैं तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो कई कथा मुझे सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म परा है कर्म परा है कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं कुरान जैसे मानते आए हैं वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया गलती की पाप किया उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक से बना है प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं बहुत किया भी है लेकिन सब लोगों ने नहीं किया है करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना ले लिए है तो मुझको ये पूर्ण कथा आपको सुनाने भी क्यों पड़े तो जब तक हम ऐसा करते हैं और अब भी करें अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे हाँ वही ऐसे हैं मित्र तो हम अच्छे हो जाते लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए तो हमको समझना चाहिए तो उन पर हमारे ऐसे विरोध नहीं करना चाहिए लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में उससे ज्यादा उसका सबब ये है क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है तो अभी मानो ख्रिस्टियों को क्योंकि पहले से करो साफ तो पीछे हम नहीं तो पीछे हम जाके जाति स्थान बनाएंगे।

हमारे हरि भाई को तो अपनाना चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है। वो कोई पंचम जाति है, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है। चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का वो अर्थ ये तो है ना लेने वाले, एक ऊंचा या दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पैसे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म का रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना, तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं अपने लिए, लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध को भी हो, और वो सब प्रजा के लिए है। तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए तो शुद्ध है, तो वो सेवा करें, लेकिन चारों

साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं। ऐसा कोई है नहीं कि जो सूत्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो सूत्र का ही मन सेवा का ही काम करना, सब सेवा है। जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजावत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है। लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़ कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा। ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गई, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की और उसको पीछे पंचम भाव पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी गलतीता कहो तो वो है, हमारे हम धर्म से हट गए इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागे आ गई है तो हम हिंदू हम सिख सब अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

प्रथम व्यक्ति सुना गांधी स्मृति द्वारा हिंदू धर्म पर गांधी जी का विचार तत्पश्चात गीत श्रोता ये अब सुनते हैं नरेंद्र चंचल के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत।

यशोदा में आपने सुना नरेंद्र चंचल के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीडियम एफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं अरुण जमैतिया, जसवा हालम, प्रियंका और साथियों के सरों में चंद कोकपोरक आधुनिक नगमे। लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोता भी अपने ले रहे थे अरुण जमैतिया, जसवा हालम, प्रियंका और साथियों के आवाजों में चंद कोकपोरक आधुनिक नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों, समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आइए सुनते हैं पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्र जम्बे वांगमो से।

0: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी जंबे वांगमो पीएम श्री जेन्नी तवंग में कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं। आज इस कार्यक्रम में मेरी वता का विषय है राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को अनुशासित, आत्मनिर्भर और देशभक्त बनाना है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह छात्रों में अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करता है और कैंप के दौरान एनसीसी के रेस शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसके कारण हमें समय की कीमत समझ में आती है और हम टीम में काम करना सीखते हैं। एनसीसी हमें देश से प्यार करना और देश की सेवा करना सिखाता है। गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एनसीसी के रेस भाग लेते हैं, जिससे देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। एनसीसी के रेस समाज सेवा में भी सबसे आगे रहता है। बाढ़, भूकंप या किसी भी आपदा के समय एनसीसी के रेस लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, रक्तदान और जागरूकता कार्यक्रमों में भी एनसीसी के रेस का बड़ा योगदान है। एनसीसी युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एनसीसी हमें अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, आपने सुना पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्र जंबे वांगमो से राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका विषय पर दिए गए वार्ता। श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त होता है। मीडियम 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा पेशे फिल्म सिमरन से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी के युगल आवाजों में, गीत वायु के है तथा संगीत सचिन जिगर का।

शंकर माधवन, सुनिधि चौहान और विशाल दल्लानी की आवाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया दोस्ताना फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे कुमार तथा संगीतकार थे विशाल शेखर। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के युगल आवाजों में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। इरशाद कमल के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम पेशकश पेश है फिल्म डियर जिंदगी से, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के युगल आवाजों में, शफरचना कौसर मुनीर के है तथा धुन अमित त्रिवेदी का।

निजी श्रोता प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा पेशे फिल्म सत्यमय जयते से अतीफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में। कुमार के रचे इस गीत को संगीत दिया है रोचक कॉली ने।

चौथों कार्यक्रम का अगला नगमा यानद लेते हैं टू स्टेट फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की युगल आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

शोधा भी अपने आनंद लिया केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की युगलवाजों में यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार थे अमित द्विवेदी। शोधा कार्यक्रम का अगला नगमा ये आनंद लेते हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में फिल्म सूर्यवंशी से। गीत रश्मि विराग के है तथा संगीत जैम एट का।

अरिजीत सिंह और अजीज कौर की युगल आवाजों में श्रोता भी अपने आनंद लिया केसरी फिल्म से यनगमा। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार थे तनिष बख्शी। श्रोताओं कार्यक्रम का अंतिम नगमा आयानंद लेते हैं फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। गीत कुमार और अहमद अनिस के है तथा संगीत शरीफ तोशी और जावेद अहमद का।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया केसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले ही सुनते हैं यह संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है उस्ताद गोलाम मुस्तफा खान से राग हमसत वाणी पर ख्याल। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोता भी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से राग हमसत वानी पर ख्याल। श्रोता इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या 4:45 पर सुनिएगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आए भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग अभी भी लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के शिजुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पानायक रिटायर्ड ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ईस्ट सियांग जिला पुलिस ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त सोनालिका जीवानी की अध्यक्षता में 24वीं जिला स्तरीय एनकोर्ट बैठक आयोजित की गई। दिबांग वैली के आनिनी स्थित पीएम श्री कप्स आंगुली में जिला स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आरए 2026 का आयोजन किया गया और भारत की लेलिन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल्स में हंगरी के बालास फार्कस के साथ

0: मुकाबला खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन में परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आए विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग अब भी लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों के 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें बांकड़ा नांगल धाम की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर है और बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। वह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी पारनायक रिटायर ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व भाई बहनों के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास के बंधन को और मजबूत कर समाज में अधिक सद्भाव, आपसी सौहार्द और शांति की भावना को प्रेरित करेगा। रक्षाबंधन समारोह के तहत विवेकानंद केंद्र विद्यालय चिंपू के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ लोक भवन ईटानगर में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें राखी बांधी। विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्तों का उत्सव होने के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को समाज को जोड़ने वाले मूल्यों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के अपने सामूहिक दायित्व की भी याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों को करुणा, सद्भाव, महिलाओं के सम्मान और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अनुशासन, ईमानदारी, सहानुभूति और सेवा भावना विकसित करते हुए जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनने की सलाह दी। इसके बाद ब्रह्म कुमारी जोनू के नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी संस्थान के सदस्यों ने भी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यपाल को राखी बांधी। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त सोनालिका जीवानी की अध्यक्षता में 24वीं जिला स्तरीय एनकोर्ट बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछली एनकोर्ट बैठक के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और जारी किए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की गई। प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को मादक पदार्थ

0: दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने निवारक उपाय के रूप में स्कूलों, पुलिस प्रतिष्ठानों और जन प्रमुख सरकारी विभागों में अचानक मादक पदार्थ जांच किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 13 स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अचानक मादक पदार्थ जांच अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए 950 ट्रक टेस्टिंग किट वितरित किए गए। बैठक में पुनर्वास केंद्रों के कामकाज की भी समीक्षा की गई। देवांगवेली के अनिन स्थित पीएम श्री कप्स आंगुली में जिला स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा, रचनात्मकता, नवाचार और गणितीय क्षमता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में देवांगवेली के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी और गणित ओलंपियाड प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने ज्ञान, वैज्ञानिक समझ और समस्या समाधान की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया गया। DDSC आनिनी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थी और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर है। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: भारत के वेलवेन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास पार्कस से मुकाबला खेलेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत की ही वीर चोट रानी को हराया था। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रुसेल्स में आयोजित की जाएगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with the total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The death toll from devastating flash floods in Nepal, Tibet has risen to 469, while 1,545 people remain missing on both sides of the border. Rescue teams are searching riverbanks and isolated settlements for survivors and recovery.

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: मीडियम वेव 107.2 मीटर यानी 1500

21 किलोहर्ट्ज और FM 104 मेगाहर्ट्ज पर आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:12 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शीर्ष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। श्रोतों, कार्यक्रम जरोखा से पहले आइए सुनते एक जरूरी सूचना। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर तवांग के कार्यालय से प्राप्त विज्ञापन अनुसार CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तवांग में केवल महिला उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष के लिए एक CWC सदस्य पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इस पद के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवश्यक अनुभव शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याणकारी गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक के पास बाल मनोविज्ञान, मानव चिकित्सा, समाज कार्य, समाज क्षेत्र, मानव विकास, कानून या सेवानिवृत्त न्याय अधिकारी या मानव स्वास्थ्य शिक्षा या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। सदस्य को प्रति बैठक 2000 मानदंड दिया जाएगा। इच्छुक महिला उम्मीदवार सहायक दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेड के साथ आवेदन पत्र को CDPO कम DCPO कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है आगामी 10 सितंबर 2026। सूचना समाप्त हुआ। शोधों कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आई हम आपका अवगत करवाते हैं पहले आज के शेष कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनिएगा दैनिक शेदुन लिरिम में तवांग मठ के मठाधीश द्वारा लमरिम सुंगचे का शेष भाग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज की कविता। आज शाम 7:11 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे फिल्म थैंक गॉड, फिल्म बजरंगी भाईजान, फिल्म शेरशाह, फिल्म मित्रों, फिल्म मिशन मंजू, फिल्म कबीर सिंह और मिस्टर, फिल्म मिस्टर और मिसेस माही से चंद नगमे। आज शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार तथा शाम 7:50 पर रीजनल न्यूज। आज शाम 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आज रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या तथा News@9 आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं, अब हम आपको कल यानी 29 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। हमेशा की तरह हमारा कल का सवा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचार के तहत। कल 2:15 पर सुनिएगा हिंदी में समाचार।

लोपर दो बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा जगजीत सिंह के सुर में चंद हिंदी भक्ति गीत कार्यक्रम वंदना में। कल दोपहर 3 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मणिपुरी आधुनिक नृत्य में। कल दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर 3 बजकर 33 मिनट पर सुनिएगा महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3 बजकर 50 मिनट पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कल संध्या 4 बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल संध्या 4 बजकर 45 मिनट पर सुनिएगा प्रादेशिक हिंदी में समाचार तथा 4 बजकर 55 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल शाम 5 बजे सुनिएगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के तहत नमदर लेरिम। 5 बजकर 35 मिनट पर कल शाम 5 बजकर 35 मिनट पर सुनेगा तवांग मठ के मठ से लमरिम सुंगे।

4:55 पर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित करेंगे। कल शाम 5 बजे सुनेगा रोजाना की तरह मोनपा कार्यक्रम के तहत नमदर लेरिम। 5:35 पर कल शाम 5:35 पर सुनेगा तवांग मठ के मठाधीश से लमरिम सुंगे तथा तत्पश्चात तवांग मटकी के शिष्य संघ के ताशी से मोनपा अनुवाद। 6 बजे लेरिम से 6:10 पर कार्यक्रम झरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक चेदन लेरिम में तवांग मठ के मठाधीश द्वारा लमरिम सुंगे का शेष भाग। 7 बजे हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर सुनेगा स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कल शाम 7:30 पर सुनेगा धुनों व गीतों का कार्यक्रम साजोर आवाज। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनिएगा फ्रॉम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से एक देशभक्ति गीत एआर रहमान की आवाज में। कल रात 8 बजे का वक्त रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कल रात 8:15 पर सुनिएगा आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम झरोखा समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मोनपा में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: 但现在八八高啊，就应用机械工办真正咱来接，弄出透明机呢，啥时候呢？用是特别用了，恰巧了，在的看来送过来着。哎呢，马上说做，哎呢，现在全部弄出当透明你了，说不定咱来这边这边，但进入群里做的得的了。就把这些难题你也等待起来多的是。
1: 但新的八八高啊，你我觉得的小老板出轨。新的情报也内容不是新的情报内，我们录入的跑跑通门那些，我去问他新的情报，我们录入的跑跑通门那些，那全部是不对，我也认不。
0: 但现在跑跑搞这用是都干的来玩子呢，马上说，现在还讲给干了卡不了玩，现在还讲给马上说拆解呀，等等这些马上说现在马上说乱给破坏，现在跑跑搞干了卡不一定也干的来着呢。ini kira je paru tu cuma sengit deres, je yang saya dah kira paru cuma deres. Tapi tindegi kira je paru tu cuma tu, cetawa hidup mah gomban je tu, sanji ki sumba na ye jine cetawa jine sanji ki gomba yoba na ye jine man je tu ngi jine tu ngi de, ini zalain zeba cibe, tak ludo tak thomi, tak sasu ni anu sa seti sale sahoyora tindele, pan ludo tak thomi ni de, ini sasu la yang so trapi ki.但等得起差的有了，等得了，那路都透明了，他才给意思的。
1: 他说：“怎么新都八百高万年呢？起码的商业起码的数名业务股，他们去经营不把起刚上，他下面能下回不来的下面能够的。”
2: 来年呢，是他的，大王跟着那么些来在管不个，路得了大王准备人啊，将军那么总个把节日目前是，人们送去，那我。即大王跟着南京来在，管不个各界看的目前是忙做些，送些南都南新大宁路，南门送些第十本的墩包，才是几两节，不让那大家大王管不看的目前是送些南红林的修节，这些商业这些是门几个送给南红，三南红包，来年那我得过龙城港大王第十六队门包来人把那车长对头，来年长包那都出人的送的，来年那到。
3: Namaskar。आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो सका है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
4: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
3: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से

0: पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-1804747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. He said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed that media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had arrived in Kathmandu from the flood-affected area yesterday have reached New Delhi this afternoon. On the Chinese side, Mr. Jaiswal said around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. He said the Indian embassy in Beijing is coordinating with local authorities, team leaders and travel agents to facilitate their evacuation.
2: Our MEA control room here is working round the clock, as is the case with the control rooms in our embassy in Kathmandu, as also our embassy in Beijing. From on the Chinese side, we have 400 Indian nationals. They are safe. They have been in touch with their family because phones, etc., I'm told, is working on that side. Our embassy has been in touch with several of them, in fact, with their team leaders and their travel agent. Many of their family members also contacted us through the helpline numbers that our embassy is running right now in Beijing.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit the Central Asian country Uzbekistan tomorrow. He will be on a 2-day visit to Tashkent. During the visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The government has said that there is no shortage of sugar in the country,

श्रोताओं, भी आपने आनंद लिया बजरंगी बाईजान फिल्म से जुवेन नोटियाल की आवाज में। इस गीत के गीतकार थे नीलेश मिश्रा तथा संगीतकार थे प्रीतम। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगले नगमा यम आपको सुनवाते हैं जुवेन नोटियाल की आवाज में फिल्म मित्रों से। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है तनिष बख्शी।

अंतर्गत जुबेन नोटियार के स्वर में चंद हिंदी फिल्मी नगमे आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए यह आनंद लेते हैं जुबेन नोटियार की आवाज में फिल्म मिशन मिशनों से। इस गीत के गीतकार है शफीर अहमद तथा संगीतकार है तनिष बख्शी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाते हैं फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस माही से जुबिन नोटियाल की आवाज में। शेफ रचना कौसर मुनीर के है तथा मौशी की तनिष बख्शी का।

श्रोताओं, फिल्म शेरशाह के इसी नगमे के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। श्रोता, इसी बीच आइए सुनते हैं फिल्म तमाशा से एक गीत अरिजीत सिंह और अलका याज्मी के युगल आवाजों में।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज नेपाल में जारी राहत और बचाव प्रयासों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने नेपाल में भारतीय नागरिकों की स्थिति और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि विदेश मंत्रालय के साथ संबंधित प्रभागों ने नेपाल भेजी जाने वाली अतिरिक्त राहत सामग्री के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने कहा है कि 96 अन्य भारतीय नागरिक जो चीन की ओर फंसे हुए थे सुरक्षित रूप से सड़क मार्ग से नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास जारी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक जो कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे आज दोपहर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। चीन की ओर से लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों टीम लीडर्स और ट्रेवल एजेंट्स के साथ समन्वय कर उनके सुरक्षित निकासी की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा है कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित की है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह पर्व भाई बहनों के बीच प्रेम स्नेह और विश्वास के बंधन को और मजबूत कर समाज में अधिक सद्भाव आपसी सौहार्द और शांति की भावना को प्रेरित करेगा। स्थानीय समुदाय के साथ अपने मजबूत और स्थायी संबंधों की पुष्टि करते हुए स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर डिवीजन ने आज महबूब स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन का आयोजन किया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सेना के जवानों को राखियां बांधी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और सेना के जवानों के बीच बातचीत भी हुई जिससे सौहार्द आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा मिला। इस आयोजन ने सेना और युवा पीढ़ी के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की टीम ने अध्यक्ष तारा के नेतृत्व में लोअर सियांग जिले का दौरा किया। टीम ने लिकावाली स्थित डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की जिसका उद्देश्य अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन और निगरानी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराना था। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने अधिनियम के प्रावधानों और इसके प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं की जानकारी दी ताकि अधिनियम का लाभ लोगों तक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिनियम में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बैठक और समन्वय की प्रक्रिया लगातार बनाए रखने पर भी जोर दिया। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के रेड रिबन क्लब और NSS द्वारा अरुणाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से आज JNC में रेड रन मिनी मैराथन 2026 का आयोजन किया। यह आयोजन अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में आयोजित किए जा रहे हैं।

0: है और जो कार्यक्रमों के साथ साथ किया गया। कार्यक्रम का विषय था यूथ फॉर एचआईवी एंड एसटीआई, जिसमें युवाओं के बीच एचआईवी और यौन संचारित संक्रमणों के प्रति जागरूकता, जांच और रोकथाम के महत्व पर जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित जीरो मठ फेस्टिवल का शुभारंभ कल जीरो के लोदर काउंटी मणिपोलियांग होंग में हुआ। 3 दिवसीय मास्टर स्पोर्ट्स आयोजन का संचालन युवा प्रमोटर तखे ताले के नेतृत्व में जीरो ऑफ रोड एडवेंचर ZOA द्वारा किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न मोटर क्लब्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 से अधिक प्रतियोगी अपने वाहनों के साथ पहले जीरो मठ फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 3 अलग अलग श्रेणियों, स्टॉक, सेमी मॉडिफाइड और विमेंस कैटेगरीज में आयोजित की जा रही है। और भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डायमंड लीग का फाइनल अगले महीने ब्रसेल्स में आयोजित की जाएगी। नीरज चोपड़ा ने स्टैंडिंग में 12 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने जून में दोहा में आयोजित डायमंड लीग प्रतियोगिता में 85.69 मीटर भाला फेंककर 4th स्थान हासिल किया था। इसके बाद इस महीने की शुरुआत में लॉजेंस में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने 88.05 मीटर का अपना इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 2रा स्थान हासिल किया। इस सत्र में 2 डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले के बाद नीरज चोपड़ा स्टैंडिंग में 6th स्थान पर रहे। उनके इन दोनों प्रदर्शनों में उन्हें डायमंड लीग फाइनल में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त अंक दिलाए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Prem Sharma. External Affairs Minister Dr. S.J. Sankar today discussed the relief and rescue efforts underway in Nepal today. In a social media post, Dr. J. Sankar said that the Indian embassies in Kathmandu and Beijing provided an updated picture in respect of the status and well-being of Indian nationals. He also informed that the concerned Ministry of External Affairs Division have apprised about the further relief supplies to be sent to Nepal. Addressing the media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Trisuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed that media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had arrived in Kathmandu from the flood-affected area yesterday have reached New Delhi this afternoon. On the Chinese side, Mr. Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. He said the Indian embassy in Beijing is coordinating with the local authorities, team leaders and travel agents to facilitate their evacuation. Mr. Jaiswal informed that the government has set up a control room in Ministry of External Affairs, which is working around the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Governor Lieutenant General K.T. Parnayak has extended his warm greetings to the people of the state on the joyous occasion of Raksha Bandhan. He expressed hope that the cherished festival would deepen the bonds of love, affection and trust among siblings and inspire greater harmony, goodwill and peace in our society. The Arunachal Pradesh State Food Commission team led by its chairman Tar Tarak visited Lower Siang district yesterday and held a meeting with the district administration and heads of departments at DC Conference Hall Likhavali to acquaint officers with the implementation and monitoring of the National Food Security Act besides other important issues. The chairman outlined the provisions of the Act and the roles of stakeholders in its effective implementation and monitoring to ensure its benefits reach the people. He stressed that the line of meeting and coordination is maintained to ensure effective implementation of the Act. Reaffirming its enduring bond with the local community, Spearhead Division under the aegis of Spear Corps celebrated Raksha Bandhan with the students of Government Higher Secondary School Mebo today. As part

श्रोताओं, भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय रात्रि के 8:01 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला फरमाइश की है जलालाबाद वेस्ट से आफैज सुरेश गंगनीजा, पूनम गंगनीजा, विशाल प्रिया दशनी और नमित आहूजा। तोरावाल नवंसार पंजाब से आफसफ है गगनदीप ठांडी, दीप्ता कुमारी ठांडी, डॉक्टर प्रियंका ठांडी, डॉक्टर प्रशांत ठांडी, डॉक्टर प्रियम ठांडी, बेबी वामिका और वैनी ठांडी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रेशम की डोरी से सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत के बोल हिंदी वर्ग के हैं तथा संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला परामर्श आइए आनंद लेते हैं फिल्म फकीरा से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है रविंद्र जैन। इस गीत की फरमाइश की है यवतमल विदर्भा महाराष्ट्र से अवैध संतोष खत्से और विनोद खत्से।

आप है नगोडा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से आप सब है दाकन नाइमा, रंजूभाई दाखंड, युवराज सिंह दाखंड और शिवांगी दाखंड। आप सबके फरमाइश पर आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। गीत के बोल है आनंद बख्शी का तथा संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है नीलेश्वर नगर नरवाल महाराष्ट्र से आफे पीएस नफकर, निर्मला नफकर और विशाल नफकर। मालकापुर से आफे नारायण इंगले, सपुन ताईदी और आशीष मुरेकर। आप सबके फरमाइश पर आयानत लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत छोटी बहन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शफरचना शैलेंद्र के है तथा संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोता व्यवहार ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं एक गीत फिल्म लव मैरिज से। अनुराधा पोटवाल और शफीर कुमार की आवाजों में गीत हस्त जयपुरी के है तथा संगीत अनु मलिक का।

श्रोता भी आपने सुना फिल्म लव मैरिज से यह गीत अनुराधा पौडवाल और शफीर कुमार की आवाजों में। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन, रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या तथा

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी चेस की, जहां भारत के आर प्रज्ञानानंदा ने रचा है इतिहास और बन गए हैं ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी। आज रुख किया जाएगा नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने बिना डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किए डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जीरो के अंतिम दौर में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया था, हालांकि भारत का ये स्टार खिलाड़ी पहुंच गया है डायमंड लीग फाइनल में, जो अगले महीने खेली जाएगी। पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज भारत के वेलनवल सेंथिल कुमार का मुकाबला हंगरी के ब्लाज फारकस से होगा। और अंत में कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा महिला क्रिकेट एशिया कप का, जो आज से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शुरू हो गया है। भारतीय टीम रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान का आगाज करेगी।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए शतरंज के पिसाज से आई हुई एक शानदार उपलब्धि से, जहां रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में हुए फाइनल में फेबियानो करुआना को 15-13 से हराकर ये खिताब जीता।
1: भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय शतरंज के हिस्से में जोड़ दी है। ग्रैंड चेस टूर के फाइनल मुकाबले की शुरुआती बाजियों में पिछड़ने के बाद प्रज्ञानानंद ने शानदार वापसी की और खिताब अपने नाम किया। भारतीय स्टार खिलाड़ी ने क्लासिकल चेस में 3-9 से हारने के बाद रैपिड सेक्शन में वापसी की और 8-0 से जीत दर्ज की। इसके बाद ब्लिट्ज प्रारूप में मुकाबला 4-4 से बराबरी पर छूटा, इससे वो कुल 15-13 के स्कोर के साथ खिताब जीतने में सफल रहे। आनंद ने पहले सेमीफाइनल में कीमर को 19-9 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि कारुआना ने दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ली सो को 18-12 से हराया। प्रज्ञानानंद 2018 में सिर्फ 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। उनकी मौजूदा रेटिंग 2750 है और अगस्त 2026 की ताज़ा फिडे क्लासिकल रैंकिंग में वो दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद को पहली वरीयता मिली थी। वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में अमरीका के वेस्ली सो ने जर्मनी के विंसेंट कीमर जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2027 के ग्रैंड चेस टूर में सीधा प्रवेश भी मिल गया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए अपना स्पॉट फिक्स कर लिया है कि 21 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने। प्रज्ञानानंदा ने अपनी जीत को लेकर के क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
2: आई वांट अ क्लोज फाइनल मैच अगेंस्ट फेबियानो करुआना। Managed to come back today in rapid and blitz after being down by 6 points in the classical portion. It was really close. It went down to the wire till the last game, and I really enjoyed the fighting games.
0: अगर कभी वापसी की बात की जाए, हम जैसे क्रिकेट में करते हैं, फुटबॉल हॉकी में करते हैं कि आप 3 या 4 गोल से या इतने रन से पीछे थे और एक शानदार वापसी को जीत में बदल देते हैं, ऐसा ही कुछ चेस में देखने को मिला, जहां ये खिलाड़ी पहले दिन 3 दिन के ये फाइनल मुकाबले होते हैं और क्लासिक राउंड में 6 अंकों से पीछे था

0: दूसरे बार जब इनको मौका मिला बराबरी का तो अच्छी बढ़त थी, लेकिन ड्रॉ पे समाप्त हुआ। कल तक लोगों को लग रहा था कि किस तरह ये फाइनल में अपने आप को विजेता बना पाते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो संतुलन और जिस खेल का प्रदर्शन किया, वाकई ऐतिहासिक प्रदर्शन जो भारतीय शतरंज में वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। और अब बात की जाए दो बार के ओलंपिक पदक विजेता स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। ये प्रतियोगिता 7 नवंबर बेल्जियम के ब्रसल्स में खेली जाएगी।
1: इस वर्ष हुई 14 डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में से 5 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा शामिल थी, लेकिन नीरज चोपड़ा 2 प्रतियोगिताओं में ही शामिल हुए। नीरज ने 19 जून को दोहा और 21 अगस्त को लुसाने में हुई डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। कल ज्यूरिख में श्रृंखला के 14वें और आखिरी चरण के बाद आई अंक तालिका में नीरज पारे अंकों के साथ 6 स्थान पर रहे। हाल में हुए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वे 100% फिट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने लुसाने डायमंड लीग में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 88.5 मीटर का थ्रो किया। कूद और थ्रो स्पर्धाओं में अंक तालिका के शीर्ष 6 खिलाड़ी 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा 5 सितंबर को होगी। श्रीलंका के उभरते स्टार रोमेश पथिरागे 39 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 35 अंक के साथ दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबेगो के केसोर्ड वॉलकॉट 23 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं। नीरज पहली बार होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई करने की राह पर हैं। ये प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होगी। 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के विजेता को अल्टीमेट चैंपियनशिप में सीधे प्रवेश मिलेगा। चंद्रशेखर शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: नीरज चोपड़ा ने अपने लिए इतने बड़े मानक तय किए हैं कि जब सिल्वर मेडल भी ये खिलाड़ी जीतता है तो लोगों को लगता है कि यहाँ से स्वर्ण की गुंजाइश थी। और नीरज चोपड़ा की शानदार एंट्री पर जो उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल में की है, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला जो अधिक जानकारी देंगे। विशेष, कल जब ज्यूरिख में टूर्नामेंट हुआ वहाँ पर नीरज नहीं थे, लेकिन नीरज ने अपना स्पॉट फिक्स किया है। हालांकि इस बार चुनौती हर बार से अधिक होगी 2022 के डायमंड लीग चैंपियन के सामने।
2: जी बिल्कुल शक्ति, और इस बार चुनौती नीरज के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण होगी क्योंकि इस बार जो उनका मुकाबला है वो पथिरागे जैसे खिलाड़ियों से होगा जो 90 मीटर का थ्रो बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा चोट के चलते काफ़ी समय से अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो इस चोट से उबर पाए। उनका मुकाबला अभी जो होने वाला है पथिरागे से, उन्होंने अभी रिसेंट में ही 92.07 मीटर का थ्रो फेंका, इससे पहले भी वो 90 मीटर का थ्रो फेंक चुके थे। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि नीरज के ऊपर कितना दबाव होगा। इसके अलावा जूलियन बेवर जो है वो चोट के चलते इस प्रतियोगिता में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे, हालांकि उनका भी रिकॉर्ड 90.40 मीटर का रहा है। इसके अलावा एंडरसन पीटर्स हो गए और टोबेगो के केशोर्ड वॉलकॉट, अमेरिका के कार्टिस थॉम्पसन, ये सभी खिलाड़ी जो है नीरज के सामने चुनौती पेश करेंगे। हालांकि नीरज ने एक बार 90.03 मीटर का जो है भाला एक बार फेंका था, लेकिन उसके बाद से वो 90 का आंकड़ा जो है क्रॉस नहीं कर पाए, तो काफी चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए।
0: जी बिल्कुल, चुनौती देखने को मिलेगी। पथिरागे एक नए सितारे की तरह जेवलिन की दुनिया में सामने आए हैं। मैं रिकॉर्ड के लिए ये चीज बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हुए 12 टूर्नामेंट में से 11 टूर्नामेंट का खिताब इस खिलाड़ी ने जीता है, और 3 बार नीरज चोपड़ा जब आमने सामने थे तो उनको दूसरे स्थान या फिर थोड़ा पथिरागे से पीछे रहकर ही संतोष करना पड़ा है। तो कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती इंतजार कर रही होगी।
2: जी बिल्कुल, नीरज के लिए एक बहुत ही कड़ी चुनौती जो है इंतजार कर रही है, और इस सत्र में जो है 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो करने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं जूलियन वेबर, इससे नीरज को एक फायदा ये मिल सकता है कि वो प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। अरशद नदीम, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था, वो खराब फॉर्म और अपनी चोट के चलते जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी हद तक नीरज के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी।
0: जी बिल्कुल, लेकिन एक कड़ा मुकाबला हो सकता है 4 से 5 सितंबर को खेल प्रेमियों को देखने को मिले, और उम्मीद होगी कि पिछले 4 अगर हम डायमंड लीग फाइनल की बात की जाए, 2022 में स्वर्ण पदक, 2023, 2024, 2025 लगातार नीरज चोपड़ा जो हैं वो को विनर रहे हैं, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। इस बार सबको उम्मीद होगी अपने इस स्टार खिलाड़ी से कि एक शानदार फॉर्म के साथ मैदान पर लौटें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और नीरज चोपड़ा के बाद अब बात की जाए स्क्वाश की, जहां पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के पुरुष वर्ग के फाइनल में आज भारत के वेलनवंस

0: कुमार का मुकाबला विश्व की 55वीं वरीयता प्राप्त हंगरी के बलाज फारकस से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल सेंथिल कुमार ने सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को एक कड़े मुकाबले में 9-11, 11-7, 11-8, 1-11 और 12-10 से हराया था। वहीं फारकस ने मिश्र के मुस्तफा एलसीटी को लगातार सेटों में 11-4, 11-3, 11-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो जिस तरह की फॉर्म देखने को मिली, हालांकि वीर चोटरानी कल उनको बाहर होना पड़ा क्योंकि सेमीफाइनल के इस ड्रॉ में दोनों ही भारतीय खिलाड़ी आ गए थे। ऐसे में उम्मीद होगी कि वो छोटी सी कसक शायद फाइनल में दोनों खिलाड़ी ना भिड़ पाएं, लेकिन सेंथिल कुमार पूरी करते हुए नजर आएंगे और इस बेहतरीन खिलाड़ी से टीम को एक पदक की जरूरत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में आगामी खेल प्रतियोगिताओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करके भारत को वैश्विक खेल गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी और 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स तथा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के संबंध में होनी हुई थी। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। ये समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब अहमदाबाद कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की मेजबानी करने जा रहा है। 2029 में यहाँ पर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होने हैं। 2023 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं कॉमनवेल्थ के और अहमदाबाद मेजबानी करेगा इस बड़े आयोजन की और कहीं ना कहीं नजर होगी 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पर। अब कार्यक्रम में बात की जाए क्रिकेट की, जहां महिला एशिया कप क्रिकेट 2026 आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। आज थाईलैंड और हांगकांग के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। एक रिपोर्ट।
1: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम इस बार T20 फॉर्मेट में खेले जा रहे टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएगी। टीम से इस बार भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय टीम ग्रुप चरण में अपना पहला मुकाबला 30 अगस्त को थाईलैंड से, 3 सितंबर को दूसरा हांगकांग से और 5 सितंबर को तीसरा अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलेगी। टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के ऊपर टीम को शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। शेफाली और मंधाना दोनों की ही हालिया फॉर्म शानदार रही है। मंधाना इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रही हैं। वहीं जेमिमा रॉड्रिग्स की गैर मौजूदगी में कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर मध्यक्रम की जिम्मेदारी होगी। ऋषा घोष और दीप्ति शर्मा निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगी। गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और रेणुका ठाकुर तेज गेंदबाजी की कमान संभालती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी श्री चरणी और राधा यादव पर होगी। चरणी इस साल खेले 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 27 विकेट चटकाए हैं। भारत ने T20 एशिया कप में 25 मुकाबले खेले हैं। इसमें से हरमनप्रीत एंड कंपनी ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि महज 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम साल 2012, 2016 और 2022 में T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि एक और बड़ी प्रतियोगिता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सामने है। विशेष हमने अभी पूल देखा जहां पे भारत के साथ हांगकांग, थाईलैंड और पाकिस्तान है। कितनी कड़ी चुनौती होगी जो कि इसके बाद सीधा सेमीफाइनल का दौर होगा।
2: ये चुनौती भारतीय टीम के लिए इतनी बड़ी नहीं साबित हो सकती है क्योंकि भारतीय टीम जो है 2025 में ओडीआई विश्व कप जीत चुकी है। हालांकि अभी 2026 में उनको हार का सामना करना पड़ा था T20 विश्व कप में, लेकिन थाईलैंड और हांगकांग जैसी जो टीमें हैं वो ट्रेडिशनली जो है क्रिकेट नहीं खेलती हैं। तो सिर्फ भारत का मुकाबला जो होगा एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान से होगा और सेमीफाइनल की जो राह है वो काफी आसान नजर आ रही है भारत के लिए।
0: जी बिल्कुल, आसान राह होगी, लेकिन भारत चाहेगा कि तीनों के तीनों मुकाबलों को जीता जाए। और इस प्रतियोगिता को लेकर के आइए सुनते हैं कि एशियाई खेलों से ठीक पहले अपनी तैयारियों को लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा है।
3: आई थिंक एशिया कप इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रियली टेस्ट योरसेल्फ एंड पुट योरसेल्फ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म एट अ लेवल विच यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर टीम, एंड आई थिंक दिस टूर्नामेंट विल डेफिनेटली गिव अस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस।
0: और भारत इस एशिया कप के तुरंत बाद एक हफ्ते के भीतर ही जापान का रुख करेगी, जहां पर टीम जो है एशियाई खेलों में एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है वहां पर प्रतिभाग करेगी। इससे पहले भारत डिफेंडिंग चैंपियन है, तो विशेष अपने खिताब के बचाव के लिए हरमनप्रीत कौर की टीम उतरेगी जापान में।
2: भारतीय टीम

0: आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और भारत को अपना मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल में खेलना है वो जापान के साथ खेलना है। फिर से एक बार वही बात कि जापान भी ट्रेडिशनली क्रिकेट नहीं खेलती है, तो भारत के लिए एक बार फिर से सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी और भारत स्वर्ण पदक की ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि भारत के लिए राह काफी हद तक वो मुकाबला आसान हो सकता है और टीम भी चाहेगी कि हर मुकाबले को उसकी प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा जाए, जैसा कप्तान ने बताया भी इसके पहले जब सभी कप्तान मिले थे। और इसके बाद अगले वर्ष की शुरुआत में पहली बार आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है, जहां भारत की नज़र एक लंबे अभियान पे, इसके बाद भारत जिम्बाब्वे के साथ कुछ टी20 मैच खेलेगी, तो उम्मीद होगी कि उसको भी जीत करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
3: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
2: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
4: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
5: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
4: We have given them range of support offers.
2: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे

0: सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
6: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
7: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी।

0: पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCnet.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
4: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड